क्या था ये? नहीं ये क्या किया क्या तुमने अभी ये मेरे साथ? मैं क्या टीवी हूँ तुम्हारा, एंटरटेन का सामान हूँ? ये रिमोट से, ये रिमोट से कंट्रोल नहीं होने वाली, मैं समझे तुम?

0: माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हो दोनों.
1: इट्स अ विग. बिल्ली को जाने दो.